करारे साहे जॉय मुखर्जी विजयंती माला का ये फिल्म इशारा जोंग का और ये नाम है। और दोस्तों ये सब पुराना पुराना गीत कितना अच्छा लगता है।

हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों के सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस साल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में यानी 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।

बेताब से अभी आप सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो एक भजन है, और ये भजन हम पेश करते हैं आप सभी सुनने वालों के लिए और सभी दुखी प्राणियों के लिए।

ये सुंदर शब्द हमने पेश किए हैं आप सभी सुनने वालों और सभी दुखी प्राणियों के लिए। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं, तुम बिन जाऊँ कहाँ।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊँ कहाँ कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह सम कभी तुमको चाह के। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों लता जी की आवाज़ में आप सुनेंगे इस बार, और फिल्म का नाम है कति पतंग, गीत का बोल है न कोई उमंग है न कोई तरंग है मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है।

0: घंटी के आइकन पर मेरे आने वाले।
1: अभी आप सुन रहे थे ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है। उपहार है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माझी नैया ढूंढे किनारा।

अभी आप सुन रहे थे माझी नैया ढूंढे किनारा। मुकेश जी की आवाज़ में हमने ये गीत पेश किए हैं, फ्रॉम द मूवी उपहार से आपने सुने हैं। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सभी ने चुन किए हैं सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जाए।

आप सुन रहे थे जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत शुरुआत करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं कि आधे घंटे तक लगातार हमने कुछ सेंटीमेंटल सॉन्ग्स आप सभी के वास्ते पेश किए हैं, और अब कुछ बदलाव हम लाने वाले हैं प्रोग्राम में। तो चलिए ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे अरे आने वाले आ तू देर ना लगा, और फिल्म का नाम है कहीं और चल। लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक फूल दो माली से हम पेश करते हैं सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर।

एक फूल दो माली से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो गए तेरे हो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। फ्रॉम द मूवी यानी द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं प्रोग्राम में

अभी आप सुन रहे थे हो गए तेरे हो गए प्यार में तेरे खो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहां। द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहां से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते लता मंगेशकर जी आपको सुनाने वाले थे। रुक जा ऐ हवा फ्रॉम द मूवी शागिर्द से हम पेश करते हैं।

रुक जा ए हवा, थम जा ए बहार, भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। और जरा सा हम देखे तो सीता और गीता, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं एक और गीत है ये, जिसमें कुछ हवा की बातें आती है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हवा के साथ साथ घटा के संग संग और साथ ही चलो। घड़ी की ओर जबकि हम देखते हैं तो ठीक यानी समय हो चला है विज्ञापन का, तो चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन।

0: Dani Radio.
1: Destiny Events presents Unforgettable Melodies of Bollywood. Nagme with all renowned artists from Mumbai. Sarigama Pa winner Ishita Vishwakarma.
2: कुछ सेंटिमेंटल सॉन्ग्स हम आप सभी के वास्ते पेश करने वाले हैं. मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी सहेली से हम पेश करते हैं जिस दिल में बसा था प्यार तेरा.

0: प्यार।
1: जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, अभी आप सुन रहे थे रमायती मुकेश जी की आवाज में। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला।

हरियाली और रास्ता है फिल्म कराम। इसी फिल्म से आप सुन रहे थे लता जी के साथ में द माइटी मुकेश जी की आवाज में लाख उतारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला। जो दूसरों का बुरा नहीं चाहते ऊपर वाला उनके साथ कभी बुरा भी नहीं होने देते। किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं ये दर्द भरा अफसाना।

किशोर डा की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये दर्द भरा अफसाना, सुन ले अनजान जमाना जमाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द न कोई जाना। छोटी सी है जिंदगी, खुशी से जियो, गम में क्या रखा है मजे से सर उठा के जियो, उदासी क्या चीज है बस मुस्कुरा के जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी।

सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अनाड़ी से हमने पेश किए हैं अशर जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे।

अभी आप सुन रहे थे इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत ही दवा देते हैं। सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र, एक फूल दुमाली है फिल्म का नाम।

सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र, फ्रॉम द मूवी एक फूल दो माली से हमने पेश किए है सुनने वालों। मोहब्बत भरा पैगाम भेजा है, मोहब्बत भरा पैगाम भेजा है, तुझे सुबह का सलाम भेजा है। तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण मेरे साजन।

तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण मेरे साजन भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी आन मिलो सजना से हमने पेश किए हैं। आए मिलन की बेला है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से द टाइटल आप सुनेंगे। आशा जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

0: बनके फूल हर कली मुस्कुराई हाय हाय हाय
1: हाय मिलन की बेला देखो आई बनके फूल हर कली।

द टाइटल फ्रॉम द मूवी आई मिलन की बेला से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, और एक बहुत सा सुंदर गीत हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन गीत चलाने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर सूरज के डूबने के बाद दोबारा सवेरा होता है। हमरे गांव कोई आएगा,

कोई आएगा और मैं ये आप सभी के वास्ते कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आपसे दूर जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, अगर कोई आपसे दूर जाना चाहता है तो जाने दीजिए। पेट्रोल बहुत महंगा है, वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। तलत महमूद जी आपको प्रोग्राम में सुनाने वाले हैं, जिंदगी देने वाले सुन।

जिंदगी देने वाले सुन भी आप सुन रहे थे, तलत महमूद आपको सुनाने वाले थे। मधुमती है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में पेश करते हैं टूटे हुए ख्वाबों ने।

मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। तलत महमूद जी एक बार फिर से प्रोग्राम में आ रहे हैं। सुनने वालों, जाए तो जाए कहाँ,

0: Al 32 keer de beste mobiele provider.
1: अभी आप सुन रहे थे जाए तो जाए कहाँ, तलत महमूद जी आपको सुनाने वाले थे। महेंद्र कपूर जी की आवाज में आप सुनेंगे, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली।

द टाइटल फ्रॉम द मूवी बहारे फिर भी आएगी से भी आप सुन रहे थे, महेंद्र कपूर जी आपको सुना रहे थे। कोई होता जिसको हम अपना कहते यारों,

कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। अभी आप सुन रहे थे किशोर दा की आवाज में फ्रॉम द मूवी मेरे अपने। लता जी आपको सुनाने वाले हैं दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या।

0: मुझे
1: दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये पूछेगा क्या। अभी आप सुन रहे थे लता जी की आवाज में। कल आज और कल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं भौरे की गुंजन।

अभी आप सुन रहे थे भौरे की गुंजन है मेरा दिल, साथ ही है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरा प्यार भी तो है ये बहार भी तो है।

माई थी मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है फ्रॉम द मूवी साथी से हमने पेश किए हैं। जवानी दीवानी है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं किशोर डा की आवाज़ में सामने ये कौन आया दिल में हुई है जो।

किशोर ढा आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जवानी दीवानी। चलादा यानी गीत का बोल है चला जाता हूँ, किशोर ढा आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी मेरे जीवन साथी।

चला जाता हूँ किसी के धुन में। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मेरे जीवन साथी से हमने पेश किए हैं कांटा लगा। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी समाधि से।

श्री राम, राम के अनन्य भक्तों, प्रभु प्रेमियों, प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके गोपाल परदेसी बाबा की तरफ से राम राम। नाना प्रकार के राम अवतारा, रामायण सबको किए अपारा। भक्तों, जिस प्रकार समय समय से राम के अवतार होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कल्पों में और अलग अलग लोकों में दुनिया में भी विभिन्न प्रकार से रामचरित्र का वर्णन किया गया है। इसी कारण तुलसीदास ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामायण के करोड़ों भक्तों में से राम कथा के प्रसिद्ध रचयिता कौन है? तो भक्तों, भगवान शिव ने इसे रचकर माता पार्वती को सुनाया, फिर भगवान से सुनकर ये प्रसिद्ध कथा काकभुशुंडी जी ने अपने पक्षियों के समूह में बैठकर गरुड़ जी को सुनाया। इसी कथा को महर्षि याज्ञवल्क ने गंगा के तीर पर बैठकर भरद्वाज मुनि और दूसरे ऋषियों को सुनाया। सर्वप्रथम इस कथा की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने की, तत्पश्चात समय समय पर अलग अलग भाषाओं के महान कवियों ने इस कल्याणकारी कथा को अपने अपने समय की सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपने अपने ढंग से गाया। रामायण में सबसे अधिक मूल्यवान यानी विशेष बात यह है कि इस कथा में श्री राम का चरित्र एक आदर्श मानव के रूप में दर्शाया गया है। इसी कारण ये कथा मानव को सच्ची राह दिखाती है। भक्तों, इस राम कथा के द्वारा किस प्रकार समस्त प्राणियों ने अपने अपने धर्म अर्थात अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते जा रहे हैं। प्रिय प्रभु प्रेमियों, ये महान गाथा संप्रदाय और जात पात को ना देखते हुए हर प्राणी की आत्मा को छूती है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से धरती के प्राणों में शक्ति प्रदान करती है, हर युग में बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव तभी मनाया जा सकता है जब हमारे मन में प्रेम, सच्चाई और विश्वास हो। ये राम कथा रस गंगा जहां भी बही, सबने उसका स्वागत किया, फिर चाहे वो धरती का कोई भी कोना क्यों ना हो। सज्जनों, ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। तो आइए श्री राम के प्यारे भक्तों, शुभारंभ करते हैं रामायण का प्रथम

वंदनीय प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्तगणों, कवियों के समाज में चंद्रमा के समान सुशोभित श्री तुलसीदास जी के अनुसार राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी अर्थात प्रभु श्री राम जी के लीलाओं की गाथा अत्यंत सुंदर है एवं प्राणी मात्र की प्रत्येक शंका का समाधान करती है। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री राम से बड़ा और कोई नाम नहीं है और श्री राम के कथा से बढ़कर पुण्यदायिनी अन्य कथा नहीं है। आज आप और हम श्री रामायण के बाल कांड का रस स्वादन करेंगे।

शैलसुता पार्वती को जब तप करते हुए हजारों वर्ष बीत गए, तब आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब शिव जी पति रूप में अवश्य मिलेंगे। और भक्तों, उधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने भगवान शिव भोलेनाथ को पार्वती के साथ विवाह के लिए तैयार किया। इस प्रकार शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। अचानक पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे आदिदेव, हे प्राणनाथ, हे कृपा निधान, मुझे उस नाम का रहस्य बताइए जिसका आप सुमिरन और

शिव जी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी वो कथा विस्तार से सुनाता हूँ जिसे काकभुसुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाई थी। जगत प्रसिद्ध के कई देश में धर्म और नीति का पालन करने वाले प्रताप भानु नाम के राजा राज्य करते थे। उनके भाई का नाम अरिमर्दन था एवं धर्मरुचि नाम का बुद्धिमान मंत्री भी था, परंतु विप्र समुदाय के श्रापवश उनको कुल समेत राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। ये तीनों ही क्रम से रावण, कुंभकरण एवं विभीषण के नाम से पुलत्स्य कुल में उत्पन्न हुए।

भगवान अग्नि देव ने यज्ञ से प्रसन्न होकर जो हविष्यान राजा को दिया था उसे खाकर तीनों रानियां कौशल्या, केकई एवं सुमित्रा गर्भवती हो गई। तीनों रानियां मन में बड़ी हर्षित हुई। भगवान जिस दिन से गर्भ में आए चहुं ओर हर्षोल्लास छा गया। इस प्रकार 9 माह बीत गए जब और वो समय आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। नक्षत्र योग लगन एवं वार सभी अनुकूल हो गए। पावन चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का अत्यंत प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न सर्दी थी न

प्रभु श्री रामचंद्र जी के अतिशय प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम भरत लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न के चूड़ाकरण नामकरण उपनयन आदि संस्कार विधिवत किए गए। भगवान श्री राम जी ने अनेक प्रकार की मनमोहक बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। एक बार माता कौशल्या ने बाल रूप श्री राम को पलने में सुलाकर पूजा घर में ठाकुर जी को भोग लगाया तो उन्होंने बालक श्री राम को वहां भोजन करते देखा। माता पलने के पास गए तो शिशु को पलने में सोता देखकर विस्मित रह गए। भक्तों, इस प्रकार अनेक लीलाएं करते हुए श्री राम जी सबको विस्मित करते रहे।

महाराज दशरथ ने मुनिवर विश्वामित्र के सन्मुख हाथ जोड़कर जैसे ही कहा कि मुनिवर, राम लखन भरत शत्रुघ्न ये चार पुत्र मैंने वृद्धावस्था में बहुत प्रयत्न से पाए हैं, आप इन्हें छोड़कर चाहे जो मांग लीजिए, चाहे मेरे प्राण मांगो, मैं सहर्ष देने को तैयार हूं। तो तुरंत ही विश्वामित्र जी क्रोधित हो उठे और राजसभा से उठकर चल दिए। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शांत किया और राजा को समझाया कि राजन, राम लखन को आप मुनिवर के साथ भेज दीजिए, राम लखन कोई साधारण बालक नहीं है।

प्रभु श्री राम तो पृथ्वी पर नर लीला रचाने और राक्षसों के विनाश हेतु अवतरित हुए थे। अतः उन्होंने मारीच की मायावी शक्तियों को देखकर उसे बिना फर का बाण मारकर लंका भेज दिया, ताकि सीता हरण के समय वहां स्वर्ण मृग बनकर काम आ सके। इसके पश्चात महामुनि विश्वामित्र के पास मिथिला के महाराज राजा जनक के यहां से सीता स्वयंवर का समाचार आया। मुनि विश्वामित्र ने श्री राम और लखन को साथ लेकर मिथिला के लिए चल दिए। मार्ग में अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, जो श्रापवश पत्थर बनी थी, भगवान की चरण कमल पड़ते ही नारी रूप होकर अपने पति गौतम ऋषि के लोक में

श्री गंगा जी की पूजा अर्चना एवं स्नान करके मुनि विश्वामित्र आनंद कंठ भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण जी को साथ लिए जनकपुरी में पहुंचते हैं तथा वाटिका में ठहर जाते हैं। राजा जनक वाटिका में ही उनसे भेंट करने पहुंचते हैं। मंगलमूल श्री राम को देखकर जनक जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं तो मुनिवर श्री राम और लक्ष्मण का परिचय कराते हैं। लक्ष्मण के मन की बात जानकर प्रभु श्री राम गुरु जी से नगर भ्रमण की आज्ञा लेकर नगर के बाजारों में घूमकर आते हैं।

प्रभु राम के अनन्य भक्तों, राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी राजकुमार महादेव के धनुष पर प्रत्यांजा यानी धनुष की डोरी चढ़ा देगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। और आज धनुष यज्ञ का वो पावन दिन आ गया है जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश देश से राजकुमार पधारे हैं। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी धनुष यज्ञ में आए। रंगभूमि की शोभा अवर्णनीय है। महाराजा जनक का मंत्री स्वयंवर में आए हुए राजाओं को राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनाई।

राजा जनक की शोक एवं व्यंग भारी वाणी सुनकर शेष अवतार लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोले, हे महाराज, सूर्यवंशी वीरों के होते हुए धरती को वीरों से खाली कहना अनुचित है। यदि भैया श्री राम जी आज्ञा दे तो मैं विध्यांचल पर्वत को फूंक मारकर मच्छर के समान उड़ा सकता हूं। इस धनुष की तो बात ही क्या। तो भक्तों, तब मुनि विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत करके श्री राम जी को कहा कि हे पुत्र, तुम उठो और धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाकर जनक के शोक दूर करो और उनकी प्रतिज्ञा पूरी करो।

बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र जी की जय जयकार से संपूर्ण ब्रह्मांड डोल उठा। नगर में बाजे बजने लगे, सज्जन लोग प्रसन्न एवं दुष्ट उदास हो गए। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। तभी शिव धनुष का टूटना सुनकर भगवान परशुराम जी रंग भूमि में आ पहुंचे। तन पर विभूति, विशाल ललाट पर त्रिपुंड, सिर पर जटा शोभायमान हो रही है, कांधे पर तरकस एवं एक हाथ में सुंदर फरसा धारण किए हुए हैं। सबने मुनिवर को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया एवं मुनि विश्वामित्र गले मिले।

ऋषि परशुराम का क्रोध शांत होने का नाम नहीं लेता। जब श्री राम जी ने शीश झुकाकर हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा कि हे देव, हमारा सिर तो सदैव आप ही के चरणों में रहा है, आपके चरण हमने छाती पर लिए हैं, ये कहकर श्री राम जी ने परशुराम जी को उनके पूर्वज भृंग ऋषि जी का पद चिन्ह अपने हृदय पर दिखाया। तब परशुराम जी समझ गए कि ये तो स्वयं श्री नारायण है। तब उन्होंने बारंबार श्री रामचंद्र जी की वंदना की और तप करने के लिए वन की ओर चले गए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की।

प्रभु श्री राम जी के भक्त जनों, इस प्रकार श्री राम जी और जनक दुलारी सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। बारात जिस समय अयोध्या वापस आई तो पूरी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया। माताओं ने सीता सहित चारों बहुओं की आरती उतारी, मंगल गान हुए। राजा ने बहुमूल्य हीरे मोती स्वर्ण गौ आदि दान किए। प्रभु प्रेमियों और श्री राम जी के भक्त जनों, जो भक्त प्रभु श्री राम जी के बाल चरित्र एवं विवाह गाएंगे अथवा सुनेंगे, उनके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद होगा। बोलिए मरिया।

प्रेमी भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बाल लीलाओं का प्रथम कांड जो बाल कांड के नाम से प्रसिद्ध है यहां समाप्त हुआ और अब आप दूसरा यानी अयोध्या कांड सुनिए।

जग की रचना रचने वाली तेरे हाथ हजार, इस भवसागर में है तेरे नाम से बेरा पार, फिर भी तेरे द्वार से मैया खाली कोई न जाए।

आपको हम बड़े प्यार के साथ यहाँ से स्वागत कर रही हूँ। यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं ये खूबसूरत दिवस के उपलक्ष्य पर, ऐ बादल झूम के चल।

सुने वालों, ए बादल झूम के चल और चल चल चल, हम सबको सुनाए बड़े प्यार के साथ मुकेश जी। मुकेश जी की आवाज़ में हम यहाँ से सुनने वाले हम मिलकर और सुने हैं। और इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं लता और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में।

वाकई में ये अलबेली और प्यार की राह है, ये खूबसूरत दिवस जो है जो हम सबको मिले हैं एक बार फिर से जीने के लिए। सुनने वालों, geniet van alles wat de dag je vandaag brengt. Ik shoop die was op Sabiko. अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती है, अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। जैसे सोने के 100 टुकड़े कर दो फिर भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होता है। और वैसे ही अच्छे लोगों की इज्जत

फिल्म के नाम तुम्हारी कसम। जी हाँ, तुम्हारी कसम। और हमको सुनाई मुकेश जी, साथ दे रही थी आशा भोसले जी ने। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी लगती है, वक्त कि एक आदत बहुत अच्छी लगती है, जैसे भी हो गुजर जाता है, किसी के साथ भी और किसी के बाद भी।

भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते, भीड़ में जो है वो सब लोग अच्छे नहीं होते, और कहते हैं कि अच्छे लोग के भीड़ कभी नहीं होते।

0: मर भी जाए तो जिंदा रहे, कितने अच्छे से सुंदर से बड़े प्यार के साथ हम सबको सुनाए, और वो भी भूपेंद्र सिंह और मैथाली सिंह सुनने वालों इस खूबसूरत दिवस में।
1: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

जी हाँ, ये पर्दा हटा दो। जब प्यार किसी से करो तो उसमें शक नहीं होता है। प्यार है तो शक कैसा, और प्यार जब नहीं है तो फिर हक कैसा।

खूबसूरत फिल्म से और ये सुंदर सा गीत यहाँ से हमने सुने कि कोरा कागज था ये मन मेरा, किशोर और लता जी से हमने सुने। नेम ऑफ टाइट अफस्टैंड फॉर अलस वच स्लेक्ट एनर्जी बसोरख। जी हाँ, समय पे उनसे भी दूर हो जाना चाहिए जहाँ पे आप नकारात्मक ऊर्जा मिलते हैं। नेम ऑफ टाइट अफस्टैंड फॉर अलस वच स्लेक्ट एनर्जी बसोरख यू फैट नीट uit te leggen als u dat niet wilt of te verklaren. Het is uiteindelijk jouw leven. Doe wat je gelukkig maakt.

कभी। जी हाँ, गुनगुना रहे हैं भंवरे और खिल रहे हैं वही फिल्म आराधना से। हम यहाँ से चला दिए हैं आपके लिए सुनने वालों। जरा मुस्कुरा कर देखो, जी हाँ जरा मुस्कुरा कर देखो, दुनिया हंसती नजर आएगी। जरा मुस्कुरा कर देखो, दुनिया हंसती नजर आएगी। और नेम एल्के दाग एन ओख्तेंड वांडलिंग, जी हाँ सुबह सैर करके देखो सेहत ठीक हो जाएगी। दोर ओख्तेंड वांडलिंग ऑफ एन वांडलिंग फन हाल्फ यूर जॉट वर्ड यू वेल सीकर गेसोंड फन।

जी हाँ, रजेश खन्ना, रजेश खन्ना इसमें प्लेबैक की है सुनने वालों पर, किशोरदास जी के आवाज़ में हम यहाँ से सुने सुंदर से गीत, वादा तेरा वादा, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले, कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे।

मेरे दिल में समा जाओ सुंदर सा राधा मोहन के ये भजन आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। कहते हैं भी कि आज आप जो कर रहे हो, आज जो आप कर रहे हो, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। और आज जो आपका भाग्य है, आज जो आपका भाग्य है, वो आप

अच्छा बुरा कर्मों का दोनों का हिसाब चुकाना पड़ता है, तो कोशिश करें हम अच्छे ही अच्छा करें। अच्छा कार्य करेंगे तो उसमें मुस्काएंगे, बुरा जो होएगा तो वो रुलाएगा।

सुंदर अति सुंदर ये भक्ति भजन कार्यक्रम यहाँ से जो आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है, हम इसमें गोटा लगाए और अपना जीवन जो है आज जो मिले हमें देखने के लिए, इसमें जरूर से हम कुछ अच्छे नया कार्य करें, अपना जीवन जो है सफल बनाए। भक्ति बुद्धि से होती है मेरे प्यारे सुनने वालों, भक्ति बुद्धि से होती है तो जुबान जो जुबान है वो सुधरती है, लेकिन जब भक्ति दिल से होती है ना तो कर्म हमारा जो है वो सुधरता है। छोटा बड़ा अपना पराया, छोटा बड़ा अपना पराया, मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। सुबह की हर किरण तुम्हारी, सुबह की हर किरण तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हर नया दिन तुम्हारी जिंदगी में खुश

इतने सुंदर सा सुंदर अति सुंदर भजन राधा कृष्ण के यहाँ से हम श्रवण करते हैं, और ये म्यूजिक भी जो है इससे हम सब प्रफुल्लित होते हैं, झूमते हैं, झूमते झूमते मुस्कान चेहरे पे लेते ये दिन के शुरुआत करते हैं। तो दिन जो है ना आगे वाला दिन बे शाम होगे रात होगे ये सब हसीन हो जाएगा। प्रेम का वास्तविक अर्थ है सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणा होना। Zijn tegen uw medemens en niet alleen tegen uw medemens, maar lief zijn tegen alles. Zoals lief zijn voor uw eten, lief zijn dat u loopt op een mooie pad, lief zijn en dankbaar zijn dat we een frisse zuurstof hebben. Dat we die kunnen inademen om ons aan de stap te zetten. Aur kehta hai ki jiska jaisa charitra hota hai na uska waisa hi mitra hota hai. Shuddhata hoti hai vicharon mein, aadmi tab pavitr hota hai. नई सुबह का उजाला तुझ में हौसला भर दे, नई सुबह का उजाला तुझ में हौसला भर दे, हर कदम पर जीत का सफर तुझे नई, हर कदम पर जीत का सफर तुझे नजर कर दे, नई और नजर कर दे।

सोलफुल सोलफुल महादेव भजन आपके लिए। जिंदगी जीने के बहुत से तरीके हैं, वाकई में कि जिंदगी जीने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है, सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्ट मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुंचे।

ले आए दिल को प्यारी सी मुस्कान दे जाए। हर दिन तुम्हें इतनी खुशी मिले मेरे दोस्त, हर दिन तुम्हें इतनी खुशी मिले कि जिंदगी तुम पर फिदा हो जाए।

शिव मेरे है और मैं शिव का हूँ। ये दो तीन लाइन अच्छे है, इसे हम सुने कि फूल दोबारा कभी नहीं खिलता, फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता, मिलते हैं लोग हजार के मिलते हैं लोग हजार मेरे दोस्त, पर हजारों गलतियां माफ करने वाला माँ बाप नहीं मिलता।

अवश्य ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे, और वो पर्वत जो है वो हमारा दिल है, उसी में हम ज्योत जलाए। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। मेरी एक ही दुआ प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे।

गणपति बप्पा मोरिया सुना दी हमको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जिस पर आप और मैं चून हूँ। ईश्वर करे कि आपकी हम सभी की जिंदगी सुकून से भरी रहे, आपका शरीर हम सबका शरीर स्वस्थ रहे और मन हमेशा खुश रहे, बल्कि जीवन का सबसे अच्छा योग क्या है तो यहाँ से हम बता देते हैं आपको कि जीवन का सबसे अच्छा योग एक दूसरे का संयोग है।

कृपया अगर आज के ये सुंदर सा भजन श्रवण हमने कर ली है जीवन के सबसे महंगी चीज क्या है। जीवन के सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान। वर्तमान यानी कि आज इस पल ये वक्त जो है। जीवन का सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। और ये एक बहुत सुंदर लाइन है कि जिन्हें याद करने से दिन अच्छा और सुबह खूबसूरत हो जाए, ऐसे कुछ एक लोग ही होते हैं। ऐसे ही एक लोग ही होते हैं। कुछ ऐसे ही लोग होते हैं हमारे जीवन में। और वो कौन है? हाँ हाँ,

Hare Keshava, Hare Mukunda, Hare Narayana, Hare Om. Het blijft een mooie bhajan. कहता है कि जो चीज गलत है वो गलत है, चुप रहकर कायर बनने से बेहतर है कि बोलकर दूर बन जाओ। और ये भी बहुत सुंदर लाइन है, सत्य वचन है दोस्त, कि ये जरूरी नहीं है कि हर रोज मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए। सुनिए, लेकिन कर्म ऐसा होना चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वही बन जाए।

0: अरे अरे
1: एक से एक लाजवाब गीत आपके लिए यहाँ से पेश हो रहा है।

रेडियो पे आप चून है, आपको हार्दिक से स्वागत है। शनिवार के प्रोग्राम आपके लिए पेश हो रहा है। इस वक्त 9:15 गुजर गया है। 29 अगस्त हो चला है मैंने लिफा मैं से 29 अगस्त।

कलम आदमी और इंसान से ये सुंदर सा गीत हम सुने ओ नीले पर्वतों के धारा। और इस बार हम सुनेंगे फिल्म नागपंचमी से मैं नदिया की धारा।

0: धूल का फूल से ये सुंदर सा गीत, मैं तो भूल गई थी ये गीत को, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा। और इस बार हम सुनेंगे जिंदगी एक सफर।
1: सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना,
0: वही तो यहाँ कल क्या हो किसने जाना।

कलम वक्त से ये सुंदर सा गीत हमने सुने हैं। जब तक चाहो खुश रहो, ये अपने हाथ में है। आप चाहते हो खुश रहना तो आप खुश रहेंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं तो

फिल्म हरियाली और रास्ता से मुकेश जी और लता जी की आवाज़ में सुने हम निकतिन त्वें से अस्त तक ये पिक्चराइज किया फिल्म है। इस बार सुनेंगे फिल्म ब्रह्मचारी से।

हमको मोहम्मद रफ़ी जी साज और संगीत शंकर जयकिशन। इस बार हम सुनेंगे नीले गगन के तले, फिल्म हमारा से महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

गगन के तले, नीले गगन के तले सुने हम, और उसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए थोड़ी सी बेवफाई से ये सुंदर सा गीत।

के में मौसम मौसम लवली मौसम, थोड़ी सी बेवफाई से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है इस बार बरसात की एक रात से लता जी की आवाज में।

हाँ, हिमेश रेशमिया की आवाज में श्रवण की है और कहते हैं, और क्या कहते हैं, रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे, कि रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे, नजरों से नहीं दिल से बस बात करे, हर पल में प्यार है। जी हाँ, हर पल में प्यार है मेरे दोस्तों, हर लम्हे में खुशी है, हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, कह दो तो यादें हैं, कह दो तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी है मेरे दोस्त।

ही पहचान बन गया है रेगी स्टाइल में। आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है आफ्रिका फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जब हम अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और आप मैं भी अपने सपने अपने लक्ष्य के पाछे जरूर से दौड़ रहे हैं। हम जरूर से कामयाब होंगे कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लो मेरे दोस्त। हाँ कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लो, यही आदत तुम्हें हर दिन खुश रखेगा। गिर कर भी जो उठ जाए वही सिकंदर

हाँ, गिर कर भी जो उठ जाए तो समझना आप सफलता को जरूर से छू लेंगे। मुस्कुराओ तो सही, मुस्कुराओ तो सही, बेवजह कभी क्या पता ये भी आदत बन जाए। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे दोस्त कि तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुस्कुरा के देखो तो सारा जहां रंगीन है, मुस्कुरा कर तो देखो, हाँ वही मुस्कुरा कर तो देखो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला दिखता।

भी दिल से कहता है और क्या कहता है, चले हम यहाँ से श्रवण करें उससे बात। उससे पहले ये आपसे बता दे कि जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। हाँ, जिसमें जीने की चाहत बस होनी चाहिए। गम जो है ना खुद ही खुशी में बदल जाएगी, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए बस। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है।

पे आप जो गौर करें मेरे दोस्तों, तो अलहिदा है और बहुत इसमें हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरी वो खुशी हो मेरे दोस्त कि तुम मेरी वो खुशी हो जिसके बिना मुझे मेरी सारी खुशी अधूरी लगती है। तो आप सोचो आप कितना खुशनसीब हैं और मैं भी कितना खुशनसीब हूँ आप जैसा दोस्त है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है मेरे दोस्त कि जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले है दर्द में अकेले थे अकेले है और खुशी में जमाना है। लगे हाथ ये बता दे हूँ ये सेल्फ फॉरसेकन कंसर्न हूँ यू सेल्फ फॉरसेकन कंसर्न एंड दैट इज आल्स नंबर 1 सेट योर सेल्फ अप नंबर 1 वन यू बेंट बलांगरेक सुक नीत नार गुडकेयरिंग ऑफ बेफेस्टिगिंग फन अंदरन गिव योर सेल्फ आंदाग इन प्लास वन आंदाग टू सुकन बाय अंदरन। Stop met jezelf te bewijzen. Wees niet bang om nieuwe dingen te proberen. Omarm verandering. Respecteer jezelf. Durf nee te zeggen. Vertel altijd de waarheid. Durf je kwetsbaar op te stellen. Denk positief. Loop weg als je slecht behandeld wordt. Zorg goed voor jezelf, mijn lieve mensen. Zorg goed voor jezelf. Ben trots op jezelf. Vier je successen. Jij bent genoeg, precies zoals je bent. Geloof in jezelf, elke dag opnieuw. En dit zijn een paar tools hoe je zelf

ये कहती हूँ कि हर दिन अपने आप को जीतो जीतो। चार दिन की है जिंदगी, किसी चार दिन की है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा। कर भला होगा भला, कंठ में ये बांध ले। होठों पे हंसी हो तो जिंदगी हंसी लगती है, होठों पे हंसी हो तो जिंदगी हसीन लगती है, खुशी के लम्हों से हर कमी दूर लगती है। इस पल के लिए, ये घंटे के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ साथ देने के लिए। आपके लिए सोनू निगम, नहीं सोनू नहीं बल्कि कुमार शानू की आवाज़ में।

सच में अगर दिल लग जा किसी से और आपका नजर में कोई बैठ गया है जो जम गया है तो हाँ वाकई में कितने बेचैन होते होंगे आप। तो ये कुमार शानू जी बयान कर दी है।

और यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा मस्ती करने के लिए, थोड़ा से क्योंकि आपका वक्त है।

हाँ भैया चलो देखिए वो कैसे शांति सब खो दे है पंप इन द सैंड। बहे अखियों से धार आपके लिए, थोड़ा झूम जाइए।

बहे आँखियों से धार, तो क्यों आँखियों से धार बहवाते हो और दिल तोड़ के आज के दिन कहाँ जाते हो? ऐसा तो ना करो,

चलत मुसाफिर ले लिया रे। मैं कहती हूँ आज यू यंग बैंड खेफ नीत आज यू वट ओल्डर बैंड या द इस बवेगन हेल हेल एरग बलांगरेक ब्लैव इन बवेगिंग वंट हत लिखा मुत फ्लेक्सिबल सैन एंड आज हत नीत फ्लेक्सिबल इस दान इस दात अम प्रॉब्लेम मैत हेल फील दिंगस दत यू मिच स्ट्रूफ हत लोप एंड बाई इन ऑफ अंदर बवेगिंग दत यू दान pijn gaat hebben. En dat moeten we niet dus. Fahon Radio, die helpt u ook bij deze om in beweging te blijven op dit speciale dag helemaal voor u.

अनिल दिसंबर के आवाज में भाई दिन न जवानी, जिंदगी को खुल कर जियो मेरे दोस्त, जिंदगी को खुल कर जियो, क्योंकि ना वक्त वापस आता है और ना ही जिंदगी दोबारा मिलता है।

म्यूजिक फॉर्मेट से मस्ती से सुने हम और गाने वाला है परवीन पुदीन दूदू। दूदू के नाम से ये जाना जाता है। ये जबरदस्त कलाकार भी है और ये गीत रिलीज किया गया है 2021 में। यहाँ से मिलकर हम सुनेंगे ढोलक का कमाल और वो गीत हम आपके लिए यहाँ से पेश करने जा रहे हैं।

वे बे और नीली बे के आवाज में। ओ बेबी आई लव यू, आई नो यू लव मी टू।

more music and a little bit talk. Kimberly Budram, Peggy Suprasad, Neera Hariprasad, Yishoma. खाते हैं हम कसम इंदर कन्हाई और विद्या खेई की आवाज में 2026 बॉलीवुड कवर गीत।

ग्राम और नीरा हरि प्रसाद के आवाज में सागर किनारे ये सुंदर कफर हुआ गीत आपके लिए पेश किया गया। द एन एख्त फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दंक बार दंक बार लिफ द फॉर हेट लेफन लिफ द फॉर हेट लेफन दंक बार फॉर द दाग।

दुनिया में लोगों की धोखा कभी हो जाता है। दोस्तों, मान लिया जाए आप अपन प्रीतम या प्रीतमा के साथ सड़क पर चल रहे होंगे, खाली सड़क है, एक फलाते हुए है और बारिश का शुरुआत हो जाता है। आप दोनों के पास सिर्फ एक पारापली, सिर्फ एक छतरी है। क्या आप करेंगे? दोनों जाकर छतरी के नीचे खड़े हो जाएंगे। ये तो हकीकत है, वास्तव में ये काम आप जरूर करेंगे। लेकिन जब बारिश खत्म हो जाता है तो क्या होता है? आप फिर दूसरे बगल, वो भी दूसरे बगल। तो वो समय जो आप छतरी के नीचे खड़े होते हैं, बारिश होता है, तो आप सिर्फ दुआ मांगते होंगे कि बारिश हमेशा होता रहे और हम दोनों हमेशा साथ खड़े रहे। ये भी, इस बात में भी कुछ मजा है दोस्तों।

नरम अंदाज का सॉन्ग भी आप सुनेंगे, हम आज कहीं दिल खो बैठे, माइटी मुकेश की आवाज में आप गीत सुनेंगे। इस फिल्म में दिलीप कुमार, नरगिस और साथ ही साथ राज कपूर भी इस फिल्म में काम किया। दोस्तों, इसी फिल्म के शूटिंग के समय राज कपूर नरगिस से प्यार हो गया दोनों में, और ये दोनों का प्यार बहुत दिन तक जारी था। साथ ही साथ ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन राज कपूर शादीशुदा था कृष्णा से, राज कपूर का शादी हो गए थे, तो इसलिए नरगिस का माता पिता नहीं जानते थे कि नरगिस आगे चलकर राज कपूर के साथ प्रेम करे। तो आगे में चलकर नरगिस का शादी तो सुनील दत्त के साथ हो गया, लेकिन राज कपूर दोस्तों न सिर्फ नरगिस, पद्मिनी के साथ भी प्यार मोहब्बत किया। उसके बाद विजयती माला, साथ ही साथ हेमा मालिनी के साथ भी राज कपूर प्यार और मोहब्बत किया। फिल्म अंदाज का सॉन्ग आप सुनेंगे। दिलीप कुमार ये गीत दिल के बाद पियानो के साथ आपको सुनाएगा।

0: देवानंद भी एक टॉप एक्टर था दोस्तों, और बहुत दिनों तक फिल्मों में काम किया। आप जानते हैं देवानंद दीवाना था सिन्नत अमन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों में प्यार मोहब्बत था। लेकिन एक दिन की बात है, देवानंद ताज होटल में सिन्नत अमन के साथ खाना खा रहे थे, तो उसी समय राज कपूर वहाँ पहुँचा। और राज कपूर ने थोड़ा से नशे में थे और जाकर पीछे से सिन्नत अमन को पकड़ लिया। तो ये बात देवानंद को अच्छा नहीं लगा। तो उसी दिनों से, उसी वक्त से देवानंद और सिन्नत अमन दोनों में प्रॉब्लम हो गया। ये भी होता रहता है दोस्तों। लेकिन राज कपूर, जैसे मैंने कहा, कई फिल्म एक्ट्रेस के साथ प्यार मोहब्बत की, उनका समय था उन दिनों में। और राज कपूर के बाद भी बहुत से फिल्म एक्टर्स हैं इन दिनों में, तो चलता फिरता रहता है फिल्म दुनिया में। आज शादी, कल जुदाई, उसके बाद फिर शादी, फिर जुदाई, वो होता रहता है। लेकिन फिल्मी दुनिया में बहुत से होता है।
1: राजा

ओ मेरे राजा, ओ मेरे रानी। दोस्तों वैसे दिलीप कुमार भी सायरा बानो से शायरी की, लेकिन उससे पहले मधुबाला का ऊपर दीवाना था। ये दोनों में प्यार मोहब्बत चलता फिरता था, लेकिन बात यह है कि दिलीप कुमार एक बार गुस्से में आकर मधुबाला का पिता को एक डकैतर कह दिया। तो पिता ने कहा दिलीप साहब को चाहिए माफ़ी मांगने को, लेकिन दिलीप ने कहा मैं माफ़ी नहीं लूँगा। तो आगे चलकर मधुबाला ने शादी किशोर कुमार से कर ली।

कुमार सानू, पद्मश्री कुमार सानू के आवाज में मैं एक गीत को पेश करूंगा। दोस्तों, आप सभी को मानना चाहिए कि कुमार सानू को वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में उनका नाम लिखा गया, इसलिए कि कुमार सानू ने 28 गीत एक रोज में बनाया। दोस्तों, एक रोज में 28 नगमे सॉन्ग्स पेश किया है, ये एक रिकॉर्ड है। एक दूसरा गायक ये काम नहीं किया है। तो सानू के आवाज़ में मैं आपके सीने में

मेरे महबूबा बहुत प्यार आया है तुम पे, पन्ना श्री उदित नारायण एंड श्रिया गोसाल, नदीम श्रवण का लिखा हुआ गीत है। दोस्तों मैंने अभी कहा नदीम श्रवण ने गीत को लिखा, लेकिन जब गीत एक गीत तैयार होता है तो उसका शुरुआत एक राइटर एक स्क्राइफर जो गीत लिखते हैं वहाँ से गीत का शुरुआत होता है। लोग कहते हैं कि राफी ने गीत बहुत अच्छा से गाया, मुकेश ने गीत अच्छा से गाया, ये लोग प्राइस पाए जाते, लोग तफोड़ी पीते, लेकिन जो लोग ये गीत लिखते हैं, जो कलाकार ये गीत लिखते हैं, सोच समझ के कई रोज लगता है, कई घंटे में ये गीत लिखते हैं, तो उसका तारीफ बहुत कम होता है। मैं सोचता हूँ आने वाले दिनों में ये म्यूजिक सॉन्ग राइटर्स जो है उनके बारे में कुछ बातचीत जरूर करूँगा।

0: सीने में सुलगते हैं अरमान। एक बार फिर जगदीप सिंह के आवाज में दोस्तों आप सुनेंगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: प्रोबेशन
0: क्लोज टू माय हार्ट का सिलेक्शन है।

सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेश, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कई सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं ये गीत बात लूँ जॉनी बच्चू के आवाज़ में।

वाह, क्या आवाज है मिस्टर जॉनी। बच्चू के आवाज में भी आप गीत को सुना, रात कली। ये रात का कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं, फिर भी ख्वाब में आए हैं।

रात्रि कली तो वादा किया है, एक बार फिर खाब में आने को दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा। रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है लेडी संजना एंड मिस्टर मुका।

0: तेरे नाम किया।
1: जब हम सड़क पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कभी कभी लेफ्ट में, कभी कभी सुपर मार्केट में भी, बहुत अजनबी लोगों से मुलाकात होते हैं, लेकिन एक अजनबी हसीना जब मिल जाता है तो क्या बात हो जाता है।

प्यार का नखमा है। प्यार तो दुनिया में कई लोग ने किया है, सभी कोई प्यार किया है। प्यार चांदन ने किया है, प्यार नली ने किया है, प्यार विद्या ने किया है, प्यार आशा ने किया है, प्यार रोशन ने भी किया है।

प्यार का नगमा है जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं सिर्फ तेरी मेरी कहानी है। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकार। रिमिक्स सॉन्ग।

लफ्जों के है दिल की कहानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, दीपावली सुमैया के आवाज में।

0: की कहानी, दिल की कहानी के बाद दिल की चैन है दोस्तों। ये दिल का चैन है जो है, ये कब मिलता है? जब दिल खुश रहता है, जब प्यार हो जाता है तो दिल खुश रहता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब दिल को चोट लगता है तो ये जितना चैन है ये सब चला जाता है। इसलिए दिल का चैन जो है हमेशा जोड़ते रहना, साथ रखना और कभी मत छोड़ना।
1: अपनी बहुत ही मेलोडियस आवाज में वो एक नहीं बल्कि अनेक गानों की कुछ प्यार किया। अभी गाना भी ए पे है बराबर, तो हमें बहुत फक्र है कि मैं सुर लगाना, वो जो कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने सब

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हो तेरे वाला दर भर गीत ब्रोकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला दर भरा गीत जिन्हें हम भूलना चाहे, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं माइटी मुकेश की आवाज में।

खुशी, खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसके हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, पर जिंदगी, जिंदगी तो वो जीता जिसको खुद पर विश्वास है।

जब तुम पास थे तो हरदम यही सोचता था कि तेरी कदर नहीं करता। और आज जब तुम मेरे पास नहीं तो एहसास होती है कदर हमेशा से थी, मगर तुझे ना खोने के यकीन ने अंधा किया था।

कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं मेरे इस दुनिया में के बाद अब की बार तेरे दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले माइटी मुकेश।

0: आया हुआ तेरे और दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है।
1: दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला
0: फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो से कराना है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 2 फिर से पर आप तार कर सकते हैं।

0: ही ना रहे हम महका करेंगे। आरंभ होता है सितारों का सफर, और सितारों का सफर में आज के प्रोग्राम में अमरीश पुरी के बारे में कुछ बातचीत होगा।
1: सिर्फ दिल की जमी है याद हमको।
0: अमरीश पुरी का जन्म 1920 को लाहौर पंजाब में हुआ। इनका असली नाम है अमरीश लाल सिंह पुरी। अमरीश पुरी एक बेस्ट

अमरीश पुरी। अमरीश पुरी यार 60 में इंडियन थिएटर्स में काम का शुरुआत किया। उस वक्त वो सचदेव और गिरीश कर्नाट के साथ भी काम करते थे। अमरीश पुरी एक वेस्टर्न फिल्म जो निकली फिरन ताक में बनी में बना था वो स्टेफन स्पीकलबर्ग का इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डून। इस फिल्म में अमरीश पुरी का नाम मोला राम था। अमरीश पुरी भी फिल्म बादल में काम किया। उस फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूंगा।

अमरीश पुरी। अमरीश पुरी के भाइयों भी एक्टर थे, जैसे चमन सिंह पुरी और मदन पुरी, और एक छोटा भाई जिनका नाम हरीश पुरी, और एक बड़ी बहन जिनका नाम थी चंद्रा कंटा। अमरीश पुरी शिमला के बीएम कॉलेज, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ अपना पढ़ाई किया। अमरीश पुरी की शादी नहीं स्टीफन फेस्टिक में अर्मिला देवी के साथ हुई, और इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी है। बेटे के नाम रजीव और बेटी के नाम नम्रता। अमरीश पुरी बाद में बॉम्बे आया, जहाँ इनके भाइयों फिल्मों में काम करते थे, और ये भी उन्हीं के तरह भी फिल्म एक्टर बनना चाहता था। अमरीश पुरी एक स्क्रीन टेस्ट के बाद नौकरी किया स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। उसी वक्त ये पृथ्वी थिएटर्स में एक नाटक में भाग लिया और संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। निगनन सीफन तक के बात है। अमरीश पुरी ने फिल्म साधना सरगम का और अमित कुमार का सॉन्ग है, और फिल्म सपना का एक सॉन्ग, दोस्तों एक ओल्ड सॉन्ग है, और इसमें नया भी मिलाया गया है। खुद सुनिए आप।

अमरीश पुरी, अमरीश पुरी जब 40 साल के थे तो अमरीश पुरी ने अनेक फिल्मों में एक्ट किया, जैसे हिंदी फिल्में, कनाडा, मराठी, हॉलीवुड, पंजाबी, मलयाली, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी अमरीश पुरी काम किया। अमरीश पुरी बॉलीवुड सिनेमा में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी रोजाना दोस्तों उसका एक काम था, लगभग 2 या 3 घंटे तक अपन आवाज़ का प्रैक्टिस करता था। उसका आवाज़ जो है आप जानते हैं अमरीश पुरी का एक अहला, एक अलहदा, एक अपर्त आवाज़ थे, और ये आवाज़ वो हमेशा रोकने के लिए 2 या 3 घंटे तक प्रैक्टिस उसमें उफन करते थे। अमरीश पुरी इसे तो कई अवार्ड भी पाया। निजी एक्टिंग शीर्षक में महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा कॉरपोरेशन अवार्ड पाया, और भी और ज़्यादा अवार्ड अमरीश पुरी ने पाया। एक सॉन्ग के बाद मैं आपसे और अवार्ड का नाम लूँगा। फिल्म करण अर्जुन का सॉन्ग है जिसमें अमरीश पुरी जोर तोर से काम किया।

1979 में अमरीश पुरी थिएटर संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। उसके बाद 1987 तक में फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फिल्म मेरे जुंग में 1991 महाराष्ट्र स्टेट गौरव पुरस्कार अवार्ड पाया। 1997 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड स्टार स्क्रीन अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग फिल्म घातक में 1998 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का स्टार स्क्रीन अवार्ड पाया फिल्म विरासत में 1999 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म मुस्कुराहट में 1999 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड फिल्म गर्दिश में 1999 के बाद है जब फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड पाया फिल्म करण अर्जुन में 1999 में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म कोयला में। उसके बाद 2002 में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म गद्दार एक प्रेम कथा। दुख की बात यह है दोस्तों कि अमरीश पुरी का मृत्यु 12 जनवरी 2005 को बॉम्बई महाराष्ट्र इंडिया में 72 साल के आयु में हुई। पत्नी उर्मिला देविकार और बेटी राजीव और नम्रता को पीछे छोड़कर चले गए। अमरीश पुरी दुनिया में नहीं है, लेकिन अमरीश पुरी का नाम जब फिल्मी दुनिया का नाम लिया जाएगा तो अमरीश पुरी का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाएगा।

0: सुनो सुनो ए भाई और बहनों,
1: हाय हाय सुनो सुनो भाई बहनों,
0: सांबड़ो रे सांबड़ो ओ राघोबा ओ दोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझे भी सुनो पापे।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

बसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इसका गाना, इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं, और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं, आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म, जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेख ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे, मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना दराई करे कि हम में भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: मुझसे यही सवाल किया था।
2: क्या
1: अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला न पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों। अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुरानी गानाएं से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पर बहते हैं, और हम उस देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, अगर आप मुकेश के सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में क्या होता है, इशारों इशारों में तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना, तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रवि की आवाज में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 55 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नई खतीर 55 का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानू राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा किरण फिल्म का नाम है पतिता का। ये फिल्म है दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में। इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंदनी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे, और नाम बहुत बड़ा है कितरूर कितरी को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहते कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा काम का चीज है और कभी कभी मोहब्बत में बहुत बहुत गलतियां हो जाती है दोस्तों। और गलतियां तो हमारे लोग का भी एक हिस्सा है हमारे दोस्तों। तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ, जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी बेमिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों। मुझे नींद न आए, आपको आते हैं? आपको क्या आते हैं? अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को चलाएंगे और सुनाएंगे, और कुछ शायरी एक दो बीच बीच में हम कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं, और ये दर्द की बात है। और दर्द में क्या होता है दोस्तों, दर्द में आंस गिर जाता है, दिल रोई पड़ता है, दिल धड़क जाता है। और जब दिल धड़क जाता है तो क्या होता है, आप खुद ही सुनिए।

क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं, आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज ही थे, जब तुम मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेरे आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं कि कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फहसाना तो निगाहों से बयान होता है। यस मींस रोगेर, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल के बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

हम चाहते हैं सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों की कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेंगे, प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारी दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं, प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोक लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

जिंदगी में, और मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो। और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है, और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों। मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है, आप तो जानते हैं जब लोग कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है, जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है, और बैठ के और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है, और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों, और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हुए के भैया ये हंसते हुए, सिर्फ प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए, नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, नजरे करम मुझे पर इतना न कर, मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इसके जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल बेस्टमैन से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो, उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो रहते है। अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

और दोस्तों टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपके तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है, उससे बचना।

जरूर तेरे प्यार में क्या क्या होता है। अरिजीत सिंह, निकिता बच्चन, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में काम किए हैं। और दोस्तों हम चलते हैं और अपना प्रोग्राम को लेकर आगे, और कहते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का प्रोग्राम है सुनाना मेरा काम, बस सुनते जाओ इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है। इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इस खुशी नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो ना हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है ना यारो, दूर जाने से बड़ी तकलीफ होता है। ये हम नहीं कहता है, ये दिल के आवाज कहते हैं कि अब जिसके जिए में आई वही प्यार रोशनी, अब जिसके ये मन आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सारे आम रख दिया है। और चलते हैं मोहब्बत इनायत कर्म देखती है, और फिल्म के नाम है बहारे आने तक, अनुराधा पौलवार और पंकज उदास क्या कहते हैं।

मोहब्बत इनायत करम देखते हैं। आओ जा आप लोग जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम जोनी नंबर वन का है और कहते हैं फिर वही दिल की वो फिर वही दिल की गुजारिश फिर वही उनका गुरूर फिर वही उनकी शरारत फिर वही मेरी कसूर दोस्तों कि तेरी खामोशी चला देती है इस दिल की तमन्नाओं को तेरी खामोशी जला देती है इस दिल की तमन्नाओं को बाकी सारी बातें अच्छी हैं तेरे तस्वीर में। हम चलते हैं मेरे सवाल का जैजाना और का ये गीत है आओ मिलकर सुना जाए।

दोस्तों, यहाँ से मेरे सवाल का एक गीत हमने आप सबको सुनाए हैं, प्यार भरी गीतों की। और बाहर प्रोग्राम हमारा यहाँ से चलते हैं और आगे को, तो प्यार भरी बातें तो करना हमारा ही काम है यारो, कि काश उसे चाहने के अरमान न होता, काश उसे चाहने की अरमान नहीं होता, मैं होश में रहती हुए अंजाम नहीं होता, ना प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान ना होता। दोस्तों नौकीर वसमोए, काश उसने चाहने का अरमान ना होता, काश उसे चाहने का अरमान न होता, मैं होश में रहती हुए अनजान न होता, न प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान न होता। तो हम चलते हैं, मिले तुमसे बिछड़ के हम मेरी साजन, और फिल्म के नाम है सलामी अलकायंगनी कुमार शानू।

तुमसे बिछड़ने के और मेरे साजन दुआ करना। अलका याग्निक का ये गाया हुआ सॉन्ग है कि दोस्तों कि अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता, अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता तो खुदा होता तो तेरे दिल होता। बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है। ये तो सच बात है दोस्तों, अगर दिल है तो दिल टूटता भी है, और अगर दिल है तो दिल रोता भी है, और अगर दिल है तो दिल प्यार भी करता है। मुझे रिश्तों के लम्हे कटारों से क्या मतलब, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब। और कोई दिल से हो मेरे तो एक शख्स की काफी है। तो हम चलते हैं कि रब्बा क्या जानते हैं, रब्बा तो सब कुछ जानते हैं। और आओ सुना जाए कि यहां पर मिशन मजनू क्या कहते हैं।

0: कबूल है
1: और कबूल हो गया है, और अगर कबूल हो गया है तो जान ले सब तैयार ठीक ठाक हो गया है। लेकिन कभी कभी किसी के प्यार जो है वो बहुत दूर रहते हैं दोस्तों, और जगत दूर दूर रहते हैं तो दिल में बहुत सा दर्द होता है, सोच होता है, रात को लोग सो नहीं पाते हैं कि कहते हैं कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है, टूट कर सारी दुनिया के रस्मों रिवाज को तुझसे अपना बनाने को जी चाहता है। तो दूरी के मतलब ये है दोस्तों कि तेरे वजूद के खुशबू बस है मेरी सांसों में, तेरे वजूद के खुशबू बस है मेरी सांसों में, ये और बात है कि नजर से दूर रहते हैं तो हम चलते हैं ओ सनम, ओ हमारी सनम, ओ हमारी सनम, उदित नारायण की ओर हम चलते हैं और पामेला जैन की ओर, जिसमें बॉबी देओल और लारा दत्ता ने काम किए हैं कि ओ सनम मेरा सनम।

ओ सनम और ओ सनम दोस्तों, और ओ सनम में क्या क्या होता है आप लोग भी जानते हैं कि कभी कभी नहीं कभी कभी बहुत ज्यादा हो चुका है जो लोग प्यार में धोखा देते हैं। दिस प्रोग्राम भैया, इस प्रोग्राम जो है ये सिर्फ लवर्स के लिए है और प्यार भरी गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारा है, और उसमें कभी कभी लोग धोखा भी दे देते हैं, बेवफाई भी करते हैं, तो हम भी उस लोग को याद करते हैं जो दिल तोड़ दिया है या तोड़ते हैं, और जो सोचते हैं दिल तोड़ने को कि तेरे ख्याल से दिल से मिटाया नहीं अभी, बेवफा मैंने तुझको बुलाया नहीं अभी, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, होने लगे हो कुछ कुछ बेवफा से तुम, हम चलते हैं तेरे नाम धोखा रख दुन नाराज हो गए हो क्या, नाराज हो गए है क्या अरिजीत सिंह की ओर है।

0: थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: और तेरा नाम धोखा रख दूं और तुम नाराज हो गया है क्या? कि कहते हैं हमने ना मोहब्बत मिली, हमें ना मोहब्बत मिली, और हमें ना मोहब्बत मिली ना प्यार मिला, हमको जो भी मिला बेवफा यार मिला। अपने तो बन गई तमाशा जिंदगी, हर कोई मकसद का तलगार मिला। कि कहते हैं दोस्तों प्यार में धोखा होता है, तूने ही लगा दिया इल्जाम इस बेवफाई, अदालत भी तेरे ही, गवाह भी तू ही थी। तो हमारे यारो, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं, और ये गीत है प्यार का दोस्तों, प्यार का सॉन्ग है, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला।
2: जब हम बड़े हो जाएंगे तो मुझसे शादी करेगी?
3: हाँ।
2: प्रॉमिस?
3: प्रॉमिस।
2: तो फिर मैं अभी आया।
3: ओफो, ये फिर कहाँ चला गया?

0: क्या कर रही हो तुम? हाँ याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था।
1: ये क्या बचपना है, मेरी शादी हो रही है।

और बिदर्जी से प्यार का सहारा ना मिला कि वो तारों की तरह, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तनहा सफर करते रहे। वो तो बीते वक्त उम्मीद आना ना था, वो तो बीते वक्त उन्हें आना था। हम यूं ही सारी रात करवते बदलते ही रहे। और यहाँ से एक गीत और हम आप लोग को सुनाने जाते हैं, और वो गीत क्या है, अब नाम मोहब्बत के लेन तो आया है गुलाम। उदित नारायण अलका यांगनी फिल्म के नाम है गुलाम। दोस्तों गुलाम फिल्म का नाम है। एक लम्हे के लिए मेरा नजरों के सामने आया, एक मुद्दत से माने खुद को आईने में नहीं देखा।

लो, महफिलें सजा लो हमेशा का तरह, प्रोग्राम और कार्यक्रम का शुरुआत। हमारे भी प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ सरनाम देश का एक महान गायक, बैठक गाना का गुरु, उस्तादों का उस्ताद श्री राम प्रसाद राम खिलावन जी के मधुर आवाज में। आप सुनेंगे बड़े बड़े राजा।

से सुरिनाम देश का महान गायक उस्तादों का उस्ताद और बैठन गाना का महान गुरु श्री राम प्रसाद राम खेलावन जी। अगला बयान सुनने को जा रही है आप सभी को एक और मशहूर गाने वाली हमारे सुरिनाम देश के मेर बकंत अल्स द फ्रोइटी फ्रॉ फन द यार 60-70, ook in Holland jarenlang gewoond en heel veel gezongen. Bauti Mashur Ganewali, Amare Suriname, des West Indies, Trinidad, Tobago, Jamaica, Ostadin, Srimati, Manraji, Lechmanjike, Beautiful, Awaz, Mee, Ati, Sundar, Bayan. ऐसा मौसम के मौसम तो बहुत ही गंभीर है यारो। एंजॉय द म्यूजिक सरनामी संगीत।

शाबाश शाबाश मशहूर गाने वाली सूरीनाम देश का बैठक गाना का उस्तादी श्रीमती मनराजी लक्ष्मण जी। अगला बयान एक और अति सुंदर बयान है हमारे सूरीनाम देश का बैठक गाना, वो भी त्रांगा बैठक गाना फ्रॉम सूरीनाम। ना टूटा दूध का दांत, क्या बात है।

शाबाश, त्रांगा बैठ गाना फ्रॉम सुरिनाम ना टूटा दूध के दांत। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी श्रोताओं को, और एक शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को मैस्त्रो रामानंद राम गुण गाय के।

0: शाबाश शाबाश शाबाश, मशहूर गायक हमारे सूरीनाम देश का रामानंद जी के मधुर आवाज में ये अति सुंदर शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। अगला बयान एक जबरदस्त चटनी सॉन्ग है और गाने वाला है हमारे हॉलैंड देश का नौजवान कलाकार जो काफी नाम कमा चुका है हॉलैंड देश सूरीनाम देश अमेरिका त्रिनिदाद टोबैगो द वन एंड ओनली प्रिंस चार्मिंग शिवम राजाराम। और वो क्या कहती है कि चलो पीसे मसाला मैशअप।
1: वी ऑल नो दैट मैजिकल पाउडर दैट स्पाइस ऑफ योर फूड एंड

शाबाश शाबाश पीछे मशाला मैशफ भाई मशहूर गायक हमारे हॉलैंडीज का शिवम राजाराम। अगला बयान आप सभी को सुनाने को जा रही है उभरती हुई कलाकारा तिफानी पूरन जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर बयान सुरीनाम टूर चटनी बैठक द चाय टू मिक्स सॉन्ग।

शाबाश शाबाश तिफानी पूरन के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर चटनी बैठक गाना आपने सुना। अगला बयान के लेकर चलते हैं आप सभी को एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग है, ऑफिशियल सॉन्ग फ्रॉम 2024 और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इरफान पन घटवा।

मी संगीत आप सुन रहे हैं। अगला बयान दोनों नैना ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनन जा रहे हैं आप सभी को स्टीफन रघुनाथ।

दोनों नैना मशहूर गाने वाला स्टीफन रघुनाथ के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया, खास करके फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। और ये अति सुंदर प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। अगला बयान एक और मशहूर गाने वाला हमारे देन हाग इपनबर्ग हॉलैंड देश से उस्तादों का उस्ताद माएस्ट्रो रुबेन पंचम सुनाते हैं छेड़ो ना छेड़ो।

शाबाश शाबाश उस्तादों का उस्ताद रूबेन पंचम जी के मधुर आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान फ्रॉम द म्यूजिक फरमासी प्रेम संगीत आप सुनेंगे चल बंबई रानी।

चल बम्बई रानी प्रेम संगीत के मधुर साज और संगीत पर ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं और ये भी आज का ये जो सरनामी संगीत पहला अध्याय बैठक गाना का आखिरी सॉन्ग होगा और वो सुनने को जा रहे हैं आप सभी को पंडित रायन कल्पू जी के मधुर आवाज में। ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे कि प्यार किया तो डरना क्या, सही बात है ना।

शाबाश शाबाश, महान गायक हमारे सूरीनाम देश का पंडित रायन कल्पू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना कि प्यार किया तो डरना क्या। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं, नहीं अभी आप तो कुछ और सुनेंगे। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, ये तक था हमारा पहला अध्याय सरनामी संगीत का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, फाउन हिंदुस्तान रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जन्मत।

होता है सुनने वालों, अभी तो आपने सुने हैं विशाल हीरा जी की आवाज़ में, भैया ताके लड़की तो लड़की शर्माए, और भौजी के का होवे है मैं कुछ नहीं कहूँगी। गलिया से गलिया

0: We got the whole world shaking.
1: Shake it baby, shake it. अभी आप सुने हैं और हम सोचते हैं कि आप अपने घर पर जरूर भी यानी शेक किए होंगे, और ये तो हमेशा होता है यानी बड़ी तादाद में होता है सुनने वालों के। जब लोग शराब पीते हैं तो क्या होता है, संदीप बदलू जी की आवाज़ में आप खुद सुन लीजिएगा।

संदीप बदलू जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कि बुढ़वा क्या खोजे है और बुढ़वा और क्या करे है, ये हम आपको सुनाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे बुढ़वा बेईमान मांगे करेली के चोखा, और करेली के चोखा के बाद हरिदत्त जयराम जी आपको सुनाने वाले हैं पैसा के मैया पहाड़ चढ़े।

जैसा कि माई पहाड़ चढ़े अभी आप सुन रहे थे हरिदत्त जयराम जी की आवाज़ में। बार बार बगिया में कोयल ना बोले।

अभी आप सुन रहे थे दविंदर सिंह शिवनाथ जी की आवाज़ में बार बार बगिया में कोयल ना बोलत। और दविंदर सिंह शिवनाथ जी की आवाज़ के बाद हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते वारिका राम सुकुल जी को, सजन मोरे आचार्य।

अभी आप सुन रहे थे वादिका रामसुकुल जी की आवाज में उड़ उड़ जाए निंदिया मोड़ी। आपके आ जाने से हम पेश करते हैं सुनने वालों रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद जी की आवाज में।

रायन मनोरथ और जॉयस सुप्रसाद जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। आपके आ जाने से हो गए तेरे हो गए अ मैशअप बाय वानिका रामसुकू।

हो गए तेरे हो गए मैशअप अभी आप सुन रहे थे वादिका राम सुकू जी की आवाज़ में। सुनने वालों यहाँ तक आप यानी सरासा हम देखे, हाँ हाँ हाँ, पहले ये गीत हो जाए।

0: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज। Have a blessed day.
1: मैं तुझे छोड़।
0: Until next Sunday.

उमर वाहिद हुसैन जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। नदीम खान प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, वादियाँ मेरा दामन।

अभी आप सुन रहे थे वादिया मेरा दामन रास्ते तेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। नदीम खान प्रोग्राम में फिर से आ रहे हैं सुनने वालों। खिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं,

खिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में दोस्त तेरा प्यार नहीं। नदीम खान जी आपको सुनाने वाले थे। तुम जब भी याद आओगे, उमर वाहिद हुसैन जी।

नदीम खान जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। कहाँ कहाँ पे न जाने भटके रहे होते, तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते। इंद्रनील और वारिका राम सुकुल जी की आवाज़ में हम पेश करते हैं, हो तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है, दिल निवाना यार क्या है।

ओ तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है, दिल ने माना यार क्या है। अभी आप सुन रहे थे वादिका राम सुकुल और इंद्रनील की आवाज़ में। महफिल नहीं होती, नज़ारे नहीं होते, यू चांद के पहलू में सितारे नहीं होते, हम इसलिए आपके करते हैं परवाह क्योंकि दिल के करीब सारे नहीं होते। वादिका राम सुकुल और स्टीफन बैताली जी आपको सुनाने वाले हैं मिलकर के मैं नदिया की धारा।

अभी आप सुन रहे थे स्टीफन बैताली और वारिका राम सुकुल जी की आवाज़ में, मैं नदिया की धारा बाहें तेरी किनारा देता चल मुझको सहारा। वारिका राम सुकुल और धीरज ललाराम की आवाज़ में ये सॉन्ग हो जाए।

रहे ना रहे हम चाहे हम यानी रहे ना रहे चाहे हम और तुम चर्च जहान में हमारे रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे धीरज लालाराम और वारिका राम सुकुल जी की आवाज़ में, इन दोनों की आवाज़ में ये सॉन्ग भी हो जाए।

दिल करने लगा है प्यार तुम्हें। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों वादिका राम सुकूल और धीरज लाला राम की आवाज़ में। चलिए एक और गीत हो जाए इन दोनों के आवाज़ में, ये सुनते हैं।

मन के साथ ही प्यार की राहों में हमसे कभी तुम ना जुदा होना। अभी आप सुन रहे थे धीरज लाला राम और वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

हमारे साथियों, प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरो का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या चिगालो मुस्कुरालो महफिले सजालो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना। इसलिए हम लोग तो यहाँ से सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहे हैं कि हैव टू नास्त आउट एट लीफ है, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम, हमारे संगीत सरनामी संगीत का प्रोग्राम। और पहला अध्याय में तो हमेशा की तरह बैठक गाना होता है, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक, और उसके बाद कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, बीच में कुछ ज्ञान के बातें है, शेर शायरी भी है। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना जहाँ पर भी हो, जिस साल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार प्यार और दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। रवि साहब जी,

गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो। पद्म श्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन सरनामी संगीत का प्रोग्राम में शुरुआत करने वाला हूँ हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का एक महान गायक जिसपे हमें नाज है, गर्व है, और बैठक गाना का एक महा गुरु उस्तादों का उस्ताद श्री जगदीश उदित राम जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, मेरे ख्याल से द मैन विद मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम द बैठक गाना डायनेस्टी, ये जगदीश प्रसाद उदित राम। मेरे तो सौभाग्य है कि महान उस्ताद के साथ में तीन बार मौका मिला इनके साथ कुछ अपना भी सुनाया और कुछ बजाया। उस टाइम में मैं तांबुरेन ज़्यादा से ज़्यादा बजा रहा था और था इनके पूज्य पिताजी के बैंड जो रवि उदित राम के साथ वो उस जमाने में बनाए थे, और फकांसी से आया था जगदीश भाई। तो आफेन टू कॉम है इफ जैम मेटाउंस, तो मिल के सुनते हैं ये महान फनकार के मधुर आवाज में भजन करे नित नेम से।

वाह वाह क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश उस्ताद का उस्ताद मास्टरो जगदीश उदित राम के ब्यूटीफुल आवाज में। कौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो, जोधपुर से सरनामी संगीत चल रहा है। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडिस का, खबोरेनत रेस डिस्ट्रिक्ट निकेरी उस्ताद टी सनातन जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं कि देश के लाज हमेशा बचाना चाहिए यारो।

डे सनातन जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना आज का इस हसीन कार्यक्रम में जो आप श्रोताओं के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है स्टूडियो फाहन दनहा शहर से। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। कौर जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का ऑल्सो बॉर्न इन हैथराइस डिस्ट्रिक्ट निकेरी उस्ताद सत्यानंद रेखा जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये सुने ये आप ये ब्यूटीफुल सॉन्ग महन माय माय।

उस्ताद श्री सत्यानंद रेखा जी के जवानी में ये अति सुंदर बयान को तैयार किया था यार एच सीफ तक में। पाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है, जो तो से आप बैठ गाना फ्रॉम सुरीनाम सुन रहे हैं। अगला बयान नौजवान कलाकार फ्रॉम द एल्बम द बिगिनिंग। 16 साल का था ये नौजवान कलाकार उस टाइम में जब ये रिकॉर्ड को वो बनाया था। कैसे सपरी द ग्रेट सुजल

से नौजवान कलाकार हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का द ग्रेट सुजल उमराव जी। अगला अभियान की तरफ बढ़ते हैं और अब लाते हैं आप श्रोताओं की सेवा में एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सुरीनाम देश का, जरा दिल थाम के बैठिए, उस्तादीन श्रीमती मनराजी लक्ष्मण जी के ब्यूटीफुल आवाज में क्या गाती थी वो मिशन हान स्टेज और द ग्रेट उस्तादीन, या अदमुत ik van zeggen, ook van heel dichtbij gekend natuurlijk, een paar keer ook met haar op mogen treden. बहुत कुछ सीखा है महान उस्तादीन जी से मैं, रिश्ते तो रिश्ते मेरे ये तो मेरी मेरा फुआ लगती थी। तो मिलके सुनते हैं दुल्हा बने एक जबरदस्त कलाकारा।

शाबाश, Den Haag Sherka de Lion of बैठक गाना उस्तादों का उस्ताद श्री देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी का बिल्कुल नया सुपर हिट सॉन्ग सूते ना देवे। अगला बयान सुनने को जा रही है आप सभी को एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सुरीनाम देश का उस्तादीन चंद्रवती कंधाय आराम के साथ ही।

है शाबाश शाबाश मशहूर गाने वाली हमारे सुरिनाम देश का उस्तादीन चंद्रवती कंधाय। तो आज का इस हसीन प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं हमारे सरनामी संगीत का एक आखिरी बयान आप सुनेंगे और वो सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को द किंग ऑफ बैठक गाना उस्तादों का उस्ताद माएस्ट्रो संदीप बदलू जी।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

साथियों, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार कंपोज बाय ब्रॉडर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप श्रोताओं को सुनाने के जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की। आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं ना कि हैप टू नाश दाओ तेज लीफ, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो इस शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम। कुछ रंग में रह गया है सुनाने के महान संगीतकार दिग्रेत जयदेव जी का, और उसके बाद आप नगमे सुनेंगे सिर्फ जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर राजेंद्र कुमार मिस्टर जुबली कुमार ने काम किए है। बीच में कुछ ज्ञान के बातें है, इसे शायरी भी है। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। रफी साहब

गालो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, रवि साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत में करने वाला हूँ महान संगीतकार माएस्ट्रो जयदेव जी के बनाया हुआ ये अति सुंदर बयान के साथ दिल धड़कने की। सुनने वाले हैं महान गायक हमारे पुराने जमाने का डिग्रेड भूपेंद्र सिंह, और साथ दे रही है शोभा जोशी फ्रॉम द मूवी त्रिको का चौथा कौन द्रियन तख्त। स्पेशल आप सभी प्रिय श्रोताओं के नाम

By Maestro Jay Deo Verma from the movie Trico Kacho Thako 1983 Bhupendra aur Shobha Joshi. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो, फ्रॉम द सेम मूवी एक बार फिर मशहूर गाने वाली शोभा जोशी उस जमाने की, और ये नगमा भी बनाया है श्री जयदेव वर्मा जी और लिखा है महादेवी वर्मा. मिलके सुनते हैं प्यार है अमृत, क्या बात है.

0: कितना अच्छा रिबन है।
1: मम्मी तुम ठीक हो?
0: हाँ?
1: मैं आपके पास सो जाऊं?
0: नहीं बेटा, अच्छे बच्चे अस्पताल में नहीं सोते। बैठ जाओ मनीषा, वहां नहीं मेरे पास बैठो।

ब्यूटीफुल सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुना अभी फ्रॉम द मूवी त्रिको का चौथा कौन, शोभा जोशी के ब्यूटीफुल आवाज में, अरेंजमेंट कंपोज बाय मास्टर जयदेव वर्मा। अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी लैला मजनू, और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि ये नगमा दो महान म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मिलकर बनाए हैं रफी साहब जी के लिए, द ग्रेट मदन मोहन और श्री जयदेव वर्मा जी, ये दीवानी के जीत है रवि साहब।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

www.faunfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए, आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, बस सुनिए। उदित नारायण और अलका याग्निक जी, फिल्म धड़कन से निकाल रहे जी, नहीं सॉरी, फिल्म

कितना प्यारा है ये चेहरा, उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। गीत हम तो रख दिए हैं प्लेयर में, लेकिन इसमें कितना आधा झूठ आधा सच, ये गीत के बारे में इस वक्त मुझे पता नहीं है, शायद भूल गए होंगे, लेकिन कितना सच कितने झूठ पता नहीं। लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिए।

वाह क्या बात है, रविंद्र जैन के साज पर लता जी और रवि साहब की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म फ़कीरा में से निकाल कर 1976 1987 तक का ये गीत आधी सच्ची आधी झूठी। इसमें आधी सच्ची भी थी आधी झूठी, और दूध में पानी में जना कोई मलिक मान ने लिखा, लेकिन बहरहाल ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एवरग्रीन किशोर कुमार, बहुत प्यारा गीत है, सुनिए इसे। जी हाँ अवश्य सुनना, ध्यान दीजिए।

क्यों तुम पे दिल है दीवाना, एवरग्रीन किशोर के किशोर कुमार जी की आवाज़ में हम पेश किए हैं ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं, लेकिन हमने भी चून नहीं किए हैं। चलो सुनते हैं, साथ मिलकर सुनते हैं कि मार गए मुझे तेरी जुदाई। चलो सुनते हैं। तख्त का ये गीत है।

अच्छा, जुदाई के बाद यही थी, हमें तो पता नहीं था। बहरहाल हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले सोनू निगम जी। सोनू निगम जी नीखन तीन सेशन सेस्त का ये गीत है, चलो सुनते हैं।

नदीम श्रवण के साज पर ये गीत हमने पेश की और हमने कहा नहीं कि तीन सेशन शस्त्र जी नहीं इस फिल्म है फिल्म सेशन नई गंधक का फिल्म जीत में से निकाले हैं नहीं कि तीन सेशन नई गंधक का ये गीत सोनू जी और अलका जी मिलकर नदीम श्रवण के साज पर ये लोग सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं वो रवि साहब का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का साज है और फिल्म है मेरी तुलसी मैं तुलसी तेरे आंगन की। फिल्म तो आपने देखे होंगे लेकिन वो टाइटल सॉन्ग हम नहीं चलाएंगे हम कोई और गीत चलाएंगे। हम चला गए एक दूसरा गीत रफ़ी साहब का और गाना में पता चलता है यही कि बंद हुई खिड़की रफ़ी साहब को बहुत बेचैन करता है। रफ़ी साहब जानना चाहता है ये खिड़की बंद क्यों है तो सुनिए।

अच्छा तो ये बात है, बंद खिड़की रफ़ी साहब को कितना परेशान की, उन्होंने आपको बताया हो फरफा हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो अगर हम दोनों हाजिर हैं तो क्या ख्याल है।

तुम्हें देंगे। ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फॉर हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से है।

चांद की ज़ेबाई रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। फिल्म छोटी सी मुलाकात में से निकाल कर निकली सेवन से हस्त का ये गीत शंकर जय किशन के साज पर। चलिए अगला गीत ये पेश करने वाले हैं वो है ये गीत, चलो देखते हैं ये प्यारा गीत। हाँ, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर।

मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में निगदी एन सही बंद 1971 का ये गीत हमने पेश की। जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? हाँ, सुनते हैं।

तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। ये शानदार गीत चला फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम पेश करते हैं ये प्यारा गीत, इस तरह से आ रहा है। जी हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

फिल्म मधुमिति मधुमति में से निकाले हैं। ये शानदार गीत मैति मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं लता जी के साथ, ये प्यारा द्वैत और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। चलिए आप भी हैं और मैं भी हूँ, जी हाँ आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ। जी बस दिल थाम

तेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू और तेरे ही नाम से ख़त्म। लता जी और मनमोहन सिंह, लता जी और मनमोहन सिंह मिलके आपको सुनाए उत्तम जगदीश के लिखी, जी नहीं उत्तम जगदीश का म्यूजिक है और हमने निकाले फिल्म वारिस से। प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को हम सुनाए ये गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार जी। हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको क्या रहा है, सुना रहा है आरडी बर्मन के साज पर, सत्ते पे सत्ता में से निकाल कर।

एवरग्रीन किशोर कुमार सत्ते पे सत्ता में से निकाले हैं और हमने पेश की हो फुरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो आरदीन बर्मन के साज पर, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तो लीजिए, अगर जब आप कार्यक्रम बहुत प्रेम प्यार मोहब्बत से सुन रहे होंगे तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

खूबसूरत तेरा चेहरा, नरगिसी है आंखें, वाह क्या बात है। आओ की तारीफ ही तारीफ, सर से पांव तक सिर्फ तारीफ ही तारीफ। इसे सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, फिल्म रूही में से निकाल कर सुरेश वादिकर की आवाज़ में पेश हुआ। चलिए हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में फिल्म ब्लैकमेल की तरफ। नेकेद इंद्रिय सैफ 1973 का ये गीत ब्लैकमेल का। जानी पहचानी गीत है।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत ब्लैकमेल में से निकाल कर निहित इंद्रियों से इवन तक का ये गीत। आपको एक बात भी बता दूँ, जिस समय ये फिल्म बना ब्लैकमेल और कल्याण जी आनंद जी के साज इसमें हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार ने गाए और धर्मेंद्र जी को इस पर एक्ट करना था, वही इसका स्टार कास्ट था, तो धर्मेंद्र थोड़ा दुविधा में था। वो डर रहा था कि किशोर कुमार जी का गीत शायद मुझ पर न जचे, क्योंकि वो ज़्यादातर रफ़ी साहब की आवाज़ में एक्ट करता था। तो यही थोड़ा सोचते, लेकिन लोगों ने कहा फिर भी आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो चुका है गीत, तो आपको एक्टिंग तो करना पड़ेगा। तो बहुत सोचे समझे फिर भी धर्मेंद्र ने किशोर कुमार जी के ये गीत पर एक्ट किए। आप नहीं मानोगे, ये फिल्म ब्लैकमेल बहुत पॉपुलर हुआ और ख़ास करके किशोर कुमार जी का ये गीत बहुत पॉपुलर, बहुत विख्यात हुआ भारत में, भारत के बाहर भी, और आज तक लोग इसे ये गीत को बहुत पसंद करते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है लोग इसे अवश्य पसंद करते रहेंगे। ब्लैकमेल में से हमने निकाले हैं, तो चलिए ब्लैकमेल के बाद बढ़ते हैं, जी हाँ, असली नकली के ओर। असली नकली के ये गीत आप सुनिए।

फिल्म असली नकली से हमने निकाले ये गीत और पेश किए शुभकामना के साथ आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को, आप सुन सकते थे। तो लीजिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, वो है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी का ये शानदार गीत। चलो सुनते हैं इस तरह से।

है वही, जी हाँ तू है वही। आर डी बर्मन के साथ पर ये गीत हम पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और ये टाइटल सॉन्ग था फिल्म ये वादा रहा का, निकली तुई तख्त का ये गीत। तो लीजिए अगला गीत, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है क्या ख्याल है। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार, किशोर कुमार जी के बाद एवरग्रीन किशोर कुमार एक बार फिर है।

दिल भर मेरे कब तक सताओगे। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं आर डी बर्मन के साज पर, सत्ते पे सत्ता में से निकाल कर ये गीत। चलो देखते हैं, हमने प्लेयर में ये गीत रखे हैं। जी हाँ, नहीं बताऊंगा, बस सुन लीजिएगा।

खाते हैं हम कसम, तुमको ही चाहेंगे, गफलत में मत पड़िए। ये कुमार सानू नहीं था, जी नहीं, ये बाबुल सुप्रियो था जो आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाहून हिंदुस्तानी। www.faahoonfm.nl पर आप चुने, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। एक बार फिर आप सुन रहे फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है मैं आपको ये गीत सुनाऊं? इस तरह से आ रहा है, देखते हैं, देवानंद का ये फिल्म है। जी हाँ, देवानंद का फिल्म है, क्या ख्याल है।

आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। जी हाँ रफ़ी साहब और गीता जी रॉय, गीता रॉय जी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए हम आपको ये गीत और सुनाते हैं। जी हाँ इसके बारे में भी नहीं बताएंगे, लेकिन बस सुन लीजिएगा शंकर जयकिशन के साथ पर सिर्फ़।

तो झूमे ये धरती झूमे आसमान, बन की पंछी शंकर जय किशन के साज पर लता जी की आवाज में हमने पेश की। हाँ, अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नेगन तीन फिर से इवन तक का ये गीत, आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ अफिलियंस रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी और रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।